0: I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose you.
0: I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose.
2: I don't wanna lose you.
0: I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose.
0: I don't wanna lose you. 'Cause you mean too much. Said you mean too much. Hey.
3: ये पंजाबी बोली जड़ी है बड़ी कमाल. मैं ना बच्चियाँ नू कहता हूँ ना यार कि बच्चों तो नू सारा कुछ मिल सकता है इस देश में. पर पंजाबी माँ बोली दी गोदी. ओदी गोदी में भाई वीर सिंह बैठे. ओदी गोदी में बैठे एडे एडे विद्वान बैठे आ. और जब भाई वीर सिंह पड़े ओ सीने खिंच जाने खाती ओ कर आराम नहीं बहते नयो वाले नैना की नींद ओ दिने रात पै बहते इको लगन लगी नहीं जाती है टोर अनंत उन्हां दी. बस तो बुरे मुकाम ना पूरी सो चाल पै इंग्लिश में मौजूद कदम नहीं मिल सकता ना.

0: Everybody low with a love song that he made. Find the streetlight.
1: SWAT 99.9.
2: The difference is the music.
0: You and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, Eli, my boyfriend's back.
3: समा इस वेले 8:31 ने तो सुन रहे अपना मन पौधा पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वाद 99.9 FM तो शाम कुमार दे नाल। चलो अगे कुछ गीत संगीत सुन दे जी। गुरलेज अख्तर ते उन्हें साथियों द्वारा गाए हुए कुछ गीत सुनाने तुहाडे पसंद का भी कोई कलाकार हो तो जरूर दस्या करो। कोशिश करांगे गीत संगीत तुहाडी पसंद का होर पेश हो किया जा सके। चलो गुरलेज अख्तर की आवाज़ से तो उन्होंने साथियों द्वारा गाए हुए कुछ गीत सुन लें।

0: वास्ते प्रेरित करोगे ता उस दी सुस्ती भी शू मंतर हो जाएगी।
1: The difference is the music.
2: So, सुनन दी आदत जरूर पानी चाहिदी है। सुनो गल्लां च फिर बोरिंग खत्म हो जाएगी, नहीं भी होएगी खत्म करने की आपां कोशिश कर सकते हैं। चलो अगे गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारे बोल आकम दे लिखे हुए बोल इस गीत से सुनते हैं।

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: ऐसी गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। फिल्म सी 20 साल बाद 1962 च बनी हुई फिल्म। हेमंत कुमार रॉय ने उदा लिखा नावल, नावल दे बेस ते फिल्म बनाई सी, उन्हों डायरेक्ट कीता सी, गाने भी उन्हें कंपोज कीते। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया सी। लता मंगेशकर ने उस वेले गाना गाया सी जदों लता मंगेशकर दे वोकल कोड जिहड़ी गले दे विच कुछ नुक्स चल रहा सी, ते लगदा सी कि शायद वह गाने हुण ना गा सके। ते जदों ये गाना तीन वारी गाया ते वह गल ना बन सकी, ते फिर लता मंगेशकर ने हेमंत कुमार नूं कहा सी कि किसी होर कलाकार नूं लै लो गाना गाउण वास्ते, ते उहदा लगदा सी कि गला जिहड़ा ठीक अजे नहीं होया, शायद ना हो। पर फिर इस तो बाद जिले नैक्सट इनटेक तो बाद जिहड़ा गाना उन्हें गाया जिदा वह फिल्म से चाहिदा सी उस तरीके नाल गाना गाया, तो लगता कि इस गाने नाल फिर मुड़ के लता मंगेशकर दी इस गीत संगीत की दुनिया से वापसी हुई सी। 20 साल बाद के 20 सालों के बाद की हुंदा, फिल्म जिहड़ी आ बहुत वधिया च वहीदा रहमान, विश्वजीत मदनपुरी इन्होंने काम किया और काफ़ी फिल्म चली सी, गाने बहुत बढ़िया सी, सस्पेंस चलता सी और फिल्म देखने वाली नहीं देखी तो जरूर देखने वाली पुरानी फिल्मों के पिछों एक फिल्म 20 साल बाद। चलो वह गाना सुनते हैं।

0: आगे आगे चल दी रैगिंग करिए।
1: और तेरा दिमाग खराब है मामा, रैगिंग का स्कूल को भी बंद हो गई है, तू टीवी देख रहा फिरता, मैं इंप्रेस कर दे एक मिनट जरा।
0: ओए अक पंती है।
1: हेलो स्वीट हार्ट, व्हाट आर योर नेम?
2: योंकी, यू आर टॉकिंग टू मी? यू टॉकिंग टू मी? मेरे बारे गल करते हो?
0: अरे हां हां हां, पीड़े से बट्टे वाली तरह नाम किया। हां
2: योंकी, मैं हां टांगे वाली चन्नो, मोर बना देंगी फड़ के कन्नो।
0: ओए बैठो, मटर दे आंदा टाइम हो गया। ओए
1: ओए मामा, तू पे रहते के

0: Peki.
1: Basta ya, basta.
2: ये फ्लो फ्लो जब मेरा डांस निकल गया मैं फड़े ही वही बने नहीं वैसी
3: तो जे हूं वो साडे पिछे पै गया
1: हाथ मेरे ओदा भी बड़े खुले है आ तेरी
4: ओ ओ बच्चे चल नहीं तू रहन दे तेरे को बच्चा नहीं जाना ओ मेनू माफ कर ओ मेनू माफ कर ओ मेनू माफ कर अरे मेनू माफ कर